0: अल्लाह ताला जल्ले शानहू और उसके फरिश्ते दरूद शरीफ भेजते हैं नबी पर, ऐ ईमान वालो तुम भी उन पर दरूद और सलाम भेजो।
1: अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लम।

0: अल्लाह ताला जल्ले शानहू और उसके फरिश्ते दरूद शरीफ भेजते हैं नबी पर, ऐ ईमान वालो तुम भी उन पर दरूद और सलाम भेजो।
1: अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लम।